0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: விவித் பாரதி தமிழகம் 102.3 வித் மீ ஆர்ஜே அனுராதா விஜயகுமார்.

0: को, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी, शुद्ध नमक देना, शुद्ध नहीं समझते, वैक्यूम रेपुरेटेड नमक ही सबसे शुद्ध सफेद होता है।
1: ऐसा बोलो ना,
0: वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान, ये हुई ना बात।
2: क्यों छोटे साहब, वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध की बच्चे भी जानते हैं इसके सारे गुण।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: வணக்கம், நான் தான் உங்க கலை மாமணி நிழல்கள் ரவி. 102.3 விவித் பாரதி, தமிழ் பண்பலை. இணைந்திருப்போம், இணைப்பிரியாமல் இணைந்திருப்போம்.

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: வான்வெளியில் வட்டமிடும்

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: வீட்டு செலவுக்கு பணம் கொடுங்க ஹஸ்பண்ட் சார்.
4: இந்த மளிகைக்கு 15,000, காய்கறிக்கு 2,000,
3: அப்புறம் கரண்ட் பில்லுக்கு
4: இப்பதான் 0 வாச்சே, எப்படி கொடுக்க முடியும்?
3: ஆமாங்க, மறந்துட்டேன், சோலார் பேனல் தான் மாட்டியாச்சு. அப்போ மிச்சமான அந்த 4,000 ரூபாய்க்கு ஷாப்பிங் போலாமே.
4: கண்டிப்பா, பிரதமரின் சூரிய வீடு இலவச மின்சார திட்டம் இப்போதே PM சூரியகர் .gov.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்யுங்கள்.

0: They say the view from the top changes everything. But for a few, the view from the clouds is the only one that matters. The Indian Air Force invites applications for commissioned officers through AFCAT 2 of 2026. Registrations open on May 20th, 2026. Visit afcat.edcil.co.in and take the first step toward the blue.
1: ओफो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है सफाई भी शॉपिंग भी शुद्ध नमक देना शुद्ध नहीं समझते वैक्यूम रेपुरेटेड नमक ही सबसे शुद्ध सफेद होता
2: तो
1: है
2: ऐसा बोलो ना
1: वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान ये हुई ना बात
3: क्यों छोटे साहब वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध की बच्चे भी जानते हैं इसके सारे गुण
4: நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கீங்க விவத் பாரதி தமிழ் FM 102.3 நிகழ்ச்சியில உங்க கூட RJ அனுராதா